0: यो समय दमौली एफएम को हो।
1: यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।
0: इट्स 1 PM।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: Willingo festivity offer. Our Pound House 1 वर्ष 200 Mbps internet and net TV. साथ में dual band router and Nokia Beacon 1.1 mesh router and net TV sets a box. मात्र ₹12 प्रति महीना में. सर्थहरू लागू होने चाहिए. छिटो बनेगा ये Willing.
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को

TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर साउंड गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL इस्पा

सीजी का टीवी एंड होम अप्लायंसेस को खरीद में आकर्षक कैशबैक तथा पक्का उपहार। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एसी में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भए पुग्छ। सीजी एलएक्स ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ। नया

क्याशब्याक तथा शेयर्स आउट गिफ्ट्स। वाशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वाशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

ओ शर्मा क्रम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आइरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनु होस् हरेक 15 दिन में क्रम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

मा क्याशब्याक तथा स्योर शॉट गिफ्ट्स, वाशिंग मशीन मा 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर मा वाशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर मा इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन मा प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: रेडियो एन आर एन 99.1 MHz।
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर, नाम एक काम अनेक, शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज, 5G स्ट्रेंथ, लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड, सबे अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागी मात्र 3300 रुपया में, साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना। बुकिंग को लागी 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।

0: कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा
1: रेडियो NRN 99.1 मेगाहर्ट्ज
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो NRN 99.1 मा यो साझ पख

मा क्याशब्याक तथा स्योर शॉट गिफ्ट्स। वाशिंग मशीन मा 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवाशर मा वाशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर मा इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन मा प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।